हे हनुमान जी, हे हनुमान बाबा, यू आर द वन दैट इज एबल टू रिड्यूस अ सेवियर फ्रॉम व्हाट एवर प्रॉब्लम्स दैट वी हैव विद इन आवर लाइव्स. यू आर द फॉर्म ऑफ भगवान शंकर. हे प्रभु, हूएवर इज ब्लेस्ड बाय यू इज फ्री फ्रॉम ऑल वरीज इन लाइफ. ऑल वरीज फॉल, ऑल ट्रबल्स लीव्स. ओ हे प्रभु, श्री राम कथा कंटिन्यूअसली रिजाइड्स.

0: सबलो श्री सिद्धि विनायक स्वामी की जय। श्री आवरदाम चंद्र की जय। श्री उमापति महादेव की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। जय सीताम।
1: आपका धर्म, आपका स्टेशन, रेडियो जागृति।

0: ये बालक सच कहते हैं, अयोध्या वालों ने ऐसा अन्याय किया है कि सहस्त्रों वर्ष नरक की यातना सहकर भी उसका प्रायश्चित नहीं हो सकेगा।
1: सचमुच महारानी सीता के निष्कासन के पश्चात ये नगरी श्रीहीन हो गई है।
2: केवल पार्टी करने से तो एक सती पर किया हुआ अन्याय नहीं मिट सकता, प्रजा को कुछ करना चाहिए।
3: क्या कर सकती है ये प्रजा?
2: सबको मिलकर महाराज के पास जाना चाहिए, उनसे जाकर प्रार्थना करनी चाहिए कि हमसे जो भूल हुई उसके कारण हम बड़े लज्जित हैं। सारी प्रजा मिलकर मांग करे कि महारानी सीता की खोज की जाए, वो जहाँ भी है उन्हें बड़े आदर से लाकर पुनः राज सिंहासन पर सुशोभित किया जाए।
3: सारी प्रजा को एक मत होकर ये मांग करनी चाहिए।
2: दुख तो यही है कि अभी तक सारी प्रजा एक मत नहीं है।

0: महाराज, दो ऋषि कुमारों ने अयोध्या वालों को रुला रुला कर पागल कर दिया है। वो महारानी सीता की कथा गाते हैं। उनके स्वर में एक ऐसी मोहिनी है कि लोग चित्तवत खड़े के खड़े रह जाते हैं। वो नगरवासियों से ऐसे ऐसे तीखे प्रश्न पूछते हैं कि सब निरुत्तर हो जाते हैं। कुछ लोगों का ये मत हो रहा है कि महारानी सीता की खोज करके उन्हें आदर सहित वापस बुला लिया जाए।
1: ये कुछ लोगों का मत है या सारी प्रजा का?
0: अभी तक कुछ लोगों का ही है।

0: बच्चों, महाराज ने तुम्हें बुलाया है।
1: महाराज नहीं, कहां?
0: अपने शिविर में।
1: परंतु क्यों?
0: ये तो वही जाने, परंतु हो सकता है कि तुम्हारा मधुर गीत सुनने की उनकी इच्छा हो।
1: चलिए,

प्रेम से बोले श्री कृष्ण भगवान की जय सीताराम आई एम पंडित शिवानंद राधे महाराज आस्किंग यू द व्यूअर्स एंड द लिसनर्स ऑफ रेडियो एंड टीवी जागृति टू जॉइन अस एवरी वेंसडे फ्रॉम 5 टू 6 पीएम वेयर वी स्पीक अबाउट द ग्लोरीज ऑफ श्री कृष्ण भगवान ऑन आवर प्रोग्राम कृष्ण अर्पणम बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय

चराचर जगत् संरक्षणीं सत्पदां चंचन चंपक नासिकाग्र विलसन् मुक्तामणिरंजितां श्रीशैलस्थलवासिनीं भगवतीं श्रीमातरं भावये ओम श्री दुर्गा लक्ष्मी सरस्वतीभ्यो नमः।

ओम नमः शिवाय। ओम हर हर हर महादेव। उमापति महादेव की जय। सयापति रामचंद्र की जय। हो भक्त दलों फिर प्लीज स्टैंड फॉर फेफरन आरती। वेल लॉग्ड इन प्लीज लाइक योर डे इन दिस पॉइंट इन टाइम ऑफ श्री राम योर रामायण बुक ए फ्लावर। लेट भगवान श्री राम ब्लेस यू। भगवान श्री राम वांट्स टू ब्लेस यू डिवोटीज। प्लीज लेट भगवान श्री राम ब्लेस यू।

जय, पवन सुत हनुमान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, सियावर रामचंद्र की जय, श्री सरस्वती माता की जय, श्री रामायण माता की जय, श्री तुलसीदास महाराज की जय, श्री गुरु महाराज की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, सदगुरु की दंडवत जय जय सीताराम। और सत्य कमरे भी आराम बैठिए आप लोग।

बोलो श्रीरा जय राम जय रे राम बोलो श्रीरा जय राम जय रे राम सियावर राम चंद्र की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम भगवान डिवोटीज अगेन टू ऑल ऑफ यू जय सीताराम वेलकम वंस मोर व्हाट इज द नाइट सत्संग व्हाट इज द नाइट व्रत ओम प्रोक्लेम टू भगवान श्री राम दिस थर्सडे इज नंबर वन ऑफ फ्लावर वी अरेंज निमाला भगवान श्री राम व्हेन वी क्लोज आवर आईज फॉर द लास्ट टाइम इन दिस वर्ल्ड We see Bhagavan in front of us, we'll offer that mala to him. If our life becomes a puja, it will become a prayer. And those whose lives are so pious, only they are truly, truly happy in this world. Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. Truly happy in this world. Blissful. Blissful. Ramayan Katha. Tell the world this to me, please. This is a solution for all world problems. Ramayan Katha. This Ramayana has in it all the 18 Puranas. The Bhagavad Mahapuran, a sense katha, is in Ramayana.

उमापति महादेव की जय हो। और प्लीज स्टैंड एवरीबॉडी, वोट फॉर सबको, प्लीज स्टैंड प्रेफर फॉर आरती फॉर लॉक्ड इन दैट योर डियर बी लाइटिंग दिस पॉइंट इन टाइम ऑफ भगवान श्री राम फ्लो एंड आरती। दैट भगवान श्री राम ब्लेस योर फैमिली, पेरेंट्स प्रे फॉर योर चिल्ड्रन, चिल्ड्रन प्रे फॉर योर पेरेंट्स एज वेल, नेबर्स प्रे फॉर ईच अदर। श्री

बोलिए श्री गौरी गणेश भगवान की जय। प्लीज से आफ्टर मी एज वी ऑफर प्रेयर टू माता सरस्वती। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं सरस्वत्यै नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै।

महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै श्रीगुरवे नमः वि बाउ टू द मेनी सेंट्स एंड सेजेस अगेन एंड अगेन ओम शांतिः शांतिः शांति हरि ओम सत्य सनातन धर्म की जय एट दिस टाइम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वी जॉइन इन अ भजन ब्यूटीफुल भजन डेडिकेटेड टू लॉर्ड गणेश जय गणेश देवा